sabe? Diz que ficou super na boa no capital. Diz que tá piada de piada de dizer. Falei, tá caindo de piada de dizer. Ele deu a coisa que ficou super na boa. E a Maria de Rúzio, sallallahu sallam, deu. A Camara Hazrat Bilal. Hazrat Bilal. Hazrat Bilal, sallam, deu. Babu. Eu vi. Mamãe de Andrés. तब सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह सरकार बोला आप क्या तब बहुत प्यारा बाजा तब सरकार बोलते कि क्या आपको बजा जाता है बिलाल को बुला के बेशक बोले बिलाल बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा जाता है बोले कैसे बजाते हैं तो बोले क्या बोलता है फिर तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने बाजा बजाया